0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: त छैन यहाँ।
1: शहर में भीड़ छ मान्छे अकेला, टेन्सन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिन्दगी से धकेला, सानो बात मा ठुलो समेला।

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके, आप तो हो।

नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्सैल है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज हिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: 新鲜灵。
1: Let's be go。मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना, डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्पो की तरह बिहेव मत करना। I carry pepper spray.
0: Okay.
1: By the way, नेहा,

0: फ्रिज, पंखा, लिड टीवी लगायत सबै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रोफेसनल रिपेयर गरिन्छ।
1: गुणस्तरीय मर्मतको लागि सम्झनुहोस्
0: नित्य इलेक्ट्रोनिक्स, गोर्खा नगरपालिका छ, आँखा अस्पताल अगाडि मोडैमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9856724210, 9856724210।
2: Choice FM 90.4 MHz।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-6670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: सेवा, अनुभवी आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सकद्वारा उपचार, छार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवा,
1: रोग लुकाएर नराखौ, समयमै परीक्षण गरौं।
0: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690, 41106690।
2: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।